ओम सुब्रह्मण्यं सुब्रह्मण्यं कन्नड़ा सुब्रह्मण्यं सुब्रह्मण्यं सुब्रह्मण्यं जन्मदाता सुब्रह्मण्यं सुब्रह्मण्यं सुब्र

जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण जय गोविंद।